हे शिव शंकर खुरुमजरी ननाई उइबाई हकना हे महादेवा चंगजरी ननाई ना नखुया थंबालदा नहाक तिपिना हैबनी भक्त सिंगी निंजब पामजब पिनबिब नहाकने हे परमेश्वर हे शिव शंकर खुरुमजरी ननाई उइबाई हकना हे महादेवा चंगजरी ननाई ना नखुया थंबालदा।

आकाशवाणी इम्फाल हौजी पुंफम असिद ङसी नोंमगी चैनल असिद मखा ताना चथजरकदब थौरम सिंह समलपन निंसिंजरी अयुक पुंग तरुक मिनिट तरा थमजरी सी दहिदाक ङसीगी सी दहिदाक त ताब फंगबिगनी खामिन असिनबगी कानबा लैबांग निंबै सै सिंह मथंग मथंग लानथोकचगनी पुंग तरुक मिनिट तरा मंगा पुंग तरुक मिनिट कुनमंगा चत्प मतमदा मतम इसै सिंह संदोकचगनी रेडियो क्लास चानी निपु तरेच शुबतांगकता क्लास एट साइंस सब्जेक्ट की लेशन नंबर 15 सम नेचुरल फेनोमिनन ताब फंगबिगनी अयुक पुंग तरुक मिनिट निफु थरमसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर की तेंबांगा लुइनना पुथोकचब थौरमनी अयुक पुंग तरेट खुंजल नाचोम ना चोमद थमजरी इनखलक लिबस।

अरिबम स्याम शर्मा सकपा इसै अमा तामिनरे आकाशवाणी इम्फाल हौजे अयुकी पुंग तरे तारे संदोक चरी खोंजेल नाचोम।

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक मणिपुरी मरोयब पाव ताबिरसे
1: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक फाव की मरोयब पाव सेक्यूरीटी फोर्स ना तोहान तोहान मौफम सिंह दगे नौमई तरा मसुंग तोहान तोहान बोम सिंह याउन याम नब खुसु कुलाई सिंह फागत ले इम्फाल वेस्ट जिला के लांगोल गेम विलेज जोन टू दगे ना केसीपी नोंगद्रन खोंब की मियोई अमा फारे लेबा असिदे इसिंग इसाव मदे काहे ना साव फिवम सिंह मायुक नरक मतम दा निंगथी ना थेंगनब गमननब अवांग मथा की मिफम अमा गृह मंत्री अमित शाह ना सभापति होइदुन गसि न्यू दिल्ली द पांगतोकनी मिफम असिदे असिग मफियम सिंह थेंगनरक मतम ना मायुक ननब सेंट्रल एजेंसी सिंह ना सेम सारिब सिंह यंगसिन गनी टीवी के मकोक से जोसेफ विजय चेन्नई तमिलनाडु की मुख्यमंत्री होने वास लौरगने कांग्रेस लेफ्ट दल से अत दल खरनावी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ना एन रंगस्वामी पुदुचेरी की मुख्यमंत्री होने खनख्रे पुदुचेरी की उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ना श्री रंगस्वामी यूनियन टेरीटोरी अब सरकार सेमनब बाटोन तौख्रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक तेलंगाना चतनी श्री मोदी ने हैदराबाद लुप कोटी लिंग मापन चामी रों की तोान तोब चौक तौर की प्रोजेक्ट संगागनी खरगी उरेप यू तमगनी स्वास्थ्य सागर सुरक्षित सागर कैंपेन की सेम सारीब साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री जितेंद्र सिंह ने हिंग्रे इंडियन कोस्ट गार्ड ने गवा शिपयार्ड लिमिटेड ICGS असल कमीशन तौख्रे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने हैदराबाद लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रामजेट कंबस्टर टेस्ट माइ पाक पांथोख्रे IPL क्रिकेट जयपुर की सवाई मान सिंह स्टेडियम ने गरंग सने की मैच में गुजरात टाइटन्स ने राजस्थान रॉयल्स को रन 43 माइथी पीख्रे पाउ लोजरे

0: एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन आईटीसीटीसी नीट एकेडमी मणिपुर लेंगा ना आया बपीरबा नीट यूजी 2027 के रेसिडेंशियल कोचिंग सेल इचं चंदना मिंग चंद बहुत जरे आहान बलाक पर अमदे माग वांग न पंग महिरोई संगीत मक्सो खुदोंग चाबा कया अम पिजरी अमुक्तं लेंसिन बिरतुन तानबियो क्वाकेटेल मयाई को भी निंथोजम लेकाई दा हंगदुक सरीबा आईटीसीटीसी नीट एकेडमी Contact number 9863091826.
1: Matang asidi film say mamuktamina si lokhatjariba film yening amadilikla saisaglibi huidrom pusparani sering banarendra ningomba sairangba tizendra isai sibu khoidana khanbirakibana khurai puthiba lekai degi susila Luinana Susilana ima oibi singa punna tamina zagi haiba warol su thambirei mayam punna tamina si isailan thokchari.

प्रियंका चोपड़ा दगी इसे यमतामिन रे मथंग सिदी आतिफ असलम अमदी पद्मिनी अनिपुन सकमिना बाई से यमामु लांथोक चरी

0: ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯀꯔꯅꯥꯇꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯂꯪꯒꯅꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯀꯔꯅꯥꯇꯛꯇ ꯊꯨꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯕꯦꯡꯒꯂꯨꯔꯨꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯂꯤꯚꯤꯡꯒꯤ 95 ꯁꯨꯕ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯕ ꯙ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯟꯗꯤꯔꯁꯨ ꯁꯪꯒꯥꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯔꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯅꯤ, 1950 ꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯏꯍꯧꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯩꯔꯤ ꯆꯨꯈꯠꯄ ꯍꯧꯈꯤ, ꯃꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯥꯛꯊꯦꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯅꯥꯏ ꯌꯣꯠꯂꯤꯡꯕꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯅꯥꯇꯛ ꯑꯁꯤ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯔꯥꯏꯖ꯭ꯌ ꯑꯃꯅꯤ, ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯦꯟ.ꯗꯤ.ꯑꯦ. ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯔꯥꯏꯖ꯭ꯌ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯂꯣꯜ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ꯫
1: देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि से जुटा है और इस संकल्प की सिद्धि में कर्नाटका की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए ये जरूरी है कि कर्नाटका में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों बेहतर हो। मैं कर्नाटका के हर परिवारजन को भरोसा दिलाता हूं कि बीजेपी एनडीए सरकार अपनी तरफ से हर प्रयास कर रही है। बीजेपी के लिए देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है।
0: ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯊꯝꯅꯕ, ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯂꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯅꯕ, ꯃꯍꯧꯁꯥꯕꯨ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯃꯥꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯑꯩꯆ.ꯑꯦ.ꯑꯦꯜ. ꯏꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤꯒꯤ ꯀꯔꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 3:00ꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕꯥꯠꯇ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 1,940,000 ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡ ꯈꯔꯒꯤꯅ ꯖꯥꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯨꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔꯅ ꯁꯪꯒꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕꯥꯠ ꯄꯅꯥꯖꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯀꯣꯔꯤꯗꯣꯔꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 1,945,000 ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 147ꯄꯨ ꯂꯦꯟ 4 ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯖꯥꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯨꯟꯒꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯋꯥꯔꯪꯒꯜꯗ ꯄꯤ.ꯑꯦꯝ. ꯃꯤꯇ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯔꯛꯁꯨ ꯁꯪꯒꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯕ ꯁꯤꯟꯙꯨ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯁꯚꯥꯄꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯁꯍꯥꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯡ, ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯍꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯇꯨꯡꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯏꯆꯥꯎ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯕꯩꯒ꯭ꯌꯥꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯒꯅꯤ꯫ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ CBSEꯅ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁ ꯑꯦꯝꯁꯀ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯃꯦꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯥꯏꯟ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯗꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ, ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯅꯤ꯫ CBSEꯅ ꯍꯥꯏ ꯗꯦꯜꯂꯤ NCR ꯁ꯭ꯀꯨꯜ 30 ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯑꯦꯝꯁꯇ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 15 ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5 ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯃꯦꯠ ꯃꯣꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 6ꯗꯒꯤ 8 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯚꯦꯇꯔꯟ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ 24 ꯁꯨꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯀꯞ ꯚꯦꯇꯔꯟ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ 3rd ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯦꯠꯁꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯁꯥꯏ ꯇꯥꯛꯌꯦꯜꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗ EMFC ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ FC ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ 3rd ꯃꯐꯝꯒꯤꯗꯃꯛ AFFC ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ FC ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ, ꯇꯥꯃꯤꯜꯅꯥꯗꯨ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯖꯥꯒꯝ TBK ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯁꯤ ꯖꯣꯁꯦꯞ ꯕꯤꯖꯩ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯃꯤꯜꯅꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ. ꯔꯪꯒꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13ꯗ ꯄꯨꯗꯨꯆꯦꯔꯤꯒꯤ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯔꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕꯥꯠꯇ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 1,940,000 ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡ ꯈꯔꯒꯤꯅ ꯖꯥꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯨꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔꯒꯤꯅ ꯁꯪꯒꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ

0: ايش ما تمشي دي يا وليد انت اول شيء ده
1: आपके सती को कॉल कर रहे
0: हैं भाई दीनी शिशु ए मामा सुली दीनी मसानु पादो थी बस वो इधर सलमानी
2: ताऊरे से ऐन खन बगत ताऊ सक माने ये बा मैं पाबूं से मुश्मांग मैं आई सी डली चाहिए सी का हंगर आदामु से ले लेने से ऐ ये तंजरे तो को
0: हंदे हले इधर ऐ नंग न सलुरी से नसानी ताऊ थी रुबो वेरीनी ना हा होजी नुंगयाई मतम योरे सिफाउबोदा अहिंग नसिद नंग नसा थीब सलिबने ने सलिब दुबो मीन उ करीनी ने हाइने गिनी से नंग करीम तो खंगदबो पुंसे कहता रे हम होजी नुपी नंग लमजाउ दे थुई बसिब फजरी इब्राहिमनी नंग उंग तो खलु ने
2: होय सा थीब बके दो वे हगे हाइनिंग न लबाई दनी मोसी
0: येंगुनी मोसी हाइरु गन मशीन से मुसे खुमिने अइना हाइदी मान पाइर फोन दो मदु मदु कैदो न बनो हाइबा नशीगे आई न मंगों तो तोड़ी जी कयारती शुगर गया बा माँ कोक पाए भी याद ब्रो अतुग नंग न मशीदा हुरान बिदों ना लो न थों गजे हंगु न सली बने बा हाँ ताई इतना माँ नशीदे हंडा लेक्शन
2: माँ ओ यार ऐसे कितो पीरो लेकाई ताकि नम
0: ओ योदी योले गरी से थोक जले बा हाय नंगे को ऐ ngai kho hai bani ne lau lau chi sheng lo nang ka dai che le hm ai na hangi ba che nang on de de nang ka dai che lu ge ho ju pung ka ta re
3: kai su sa ti da kai am the ge ne ho ju po
2: nang bu na pa na tu am na phone jan dan jan dau ri du bu phone du ko pa ya dai ba
0: ai ai na chang ni la ko ai shi la ko lau lau lau
3: kai lu
0: ai shi de lo shi kai lo शिकाइनो शिकारीनो हैबनी
4: देखो
0: नंगना सोयाम फत्री शुकरी गिनो हैबनी हां नंगे कोई करी वालनगे कुमो नशिंदो
3: अयो अयो चैदु कल करो नाही हैबनी बाबू
0: करी ना बा करी ना बा करी
3: अयो बाबू
0: करी ना बा
2: मुतो शिबो
0: ए ए नंग करी गिनो सोयाम फत्री शुकरी गिनो नंगे अपा मंगा तने त्रो मसीया कोई तोरी बसिबो मामा मापा ओए बे कोई ना हाय भी इन्द्र ब मसा नंग शिवो ऐ कुनाए जी महिक ओए ब नंग शिवो नंग
2: यारे से मैं बाबू यारे
0: नंग नंग महिक
2: नंग तो पीरो मैं बाबू ने पुमंद नंगांग से लोई मार कर दे कई नो अंगांग दबु महिक एम ने मनाय एम ने पत्ता बोवांग अंतर तो मैं गंभी बाहु नब्रो
0: ऐ कंखलो नंग ने कंखल कंखल पति की ने नशी फिल्म से योरी से ऐ की शादी नहीं थोंगी का है करी वाले नहीं थोंग वाले कंखल को तो ना
2: ओ कंखल चढ़ी है कोई कंखल चढ़ी है नुपानुई दिन है अंगांग से ना नहीं

0: 我也想学。
1: 一到呢，他是在另一个国家，我到了弄个一节课来的。
0: 会懂吗？
1: 如果呢，我兄弟啥个啥个，大部分啥个都会搞。
0: 会懂吗？懂吗？兄弟个来不去的，噗，好过那个黑的拉了，你懂吗？都一堆没得有点那懂吗？各种那个啥去的，对吗不？啥那土呢？没啥话看个打的，不是的。他不给 interview 个要的那东西，本事给他们看的呢。忙那话看红了不是？没事不能没事，一堆没给回来再问你，你懂吗？没事给他们阿姨好让忙给他们呢，一堆没给给不没事呢，不过都能来问你，你懂吗？
1: Doctor， 阿姨不可以害给他们抗日呢。那堆么多？密码那得问你呢？有没得给西安给害的养干的呢？ya masu opisat ta basu ya da badina ya mana opisat lam dai da mahapu thori na pullaga thamam ma ni adu bo ai na thok sat khing ai da thori do thadat ta yum ma shi de gi na thok ma ang khre thi ba ya ba thi re na shi phaw bo phang ba lai de doctor
2: uncle ai na sent de le ni da ai khu sent gi get da ang aw bi ma na he he thong kan na khana thil ga kan la we na哎，可是，兄弟，那单不给困起来，休克的更没得打起。哦，妈的，哎呀妈，说一点我也能干。啊，怎么呢，妈的？那别说了，这头都那很紧了，我你还不得？哎，弄么的，看路的吧，你 uncle。
1: doctor， 你没肯定你那对么的？一下人头乌的不贵的很呢，啊，怎么还？没啥子问题，你为啥比妈呢？啥气不到？没啥。提不起不为侬跟你 doctor，
0: 对吗？可以侬对面那倒龙的是吧？阿杜阿康跟吧，是皮包是黑用那不么？可大一点侬对面那阿个来不是吧？大妈，一对面都阿个乌边那的，
1: 哈，
0: 是那对，马克马克阿乌去的，
1: 哈，对，
0: 好个。sana thoi bo mukteng wakhan tarak na bahai duna itai munai gi pham da wapham se hanna hanna hai rakhi matam khara gira hai nai na khallu bune
1: ankal
0: tu bo ahoi na na
1: ankal
0: tamo ai itai maga su marak marak ta pau phau na ke tu bo ai gi asin maga marak khara gep lai na kre ekhang khang au dana social media da sana thoi gi post khara thagalak ba ai na u ki थबक की इंटरव्यू का सेट पगे पोस्ट का याद थे नखे मधु वो बता आई इतई मबू इतई मने लव की बत हवदांग दो थकत नहीं मन की दना थवी ने मप्पम मस्त लाग दी बनी था
1: अंकल कहीं ना कहीं बिरिस हो इमा इमा
0: सना तो है
1: कहीं ना तो रो मिस हो इमा नंबु कराये थे लेके इमा कहीं नो कहीं शिल ही बा आयो ऐ न तारी बो पाव शिबो मशिबो ताव द तू शुंग बा अंगक पतक तो सनारे नंबो नंबो कदाई दे लेगे मशिबो मशिबो ओय तो पे यावरे ने सिलही बा
0: हो ऐ शु ताव द अंगक पहाई बो दोरे तमो इतै मगे तो दो से
1: अंक ऐ मा बो थिरो ने
0: हाय
1: ऐ मा बो जि मो थिरो ने ऐ मा बो थिरो ने
0: हाय ngai खोने हे ngai खोने हे स्टॉप

शुक्रिया मेरिना। नमस्कार, आकाशवाणी इम्फाल के संगाई चैनल, जिसे आप ट्यून कीजिएगा 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर, दोपहर के मनोरंजक कार्यक्रम में से गीतमाला के अंतर्गत प्रसारित है ये कार्यक्रम संगीत धमाका, जिसे आप सुन पाएंगे अपने दोस्त वैलेंटीना के साथ।

दोस्तों आज है, आज है 10 मई, और आपको याद दिलाएं अपनी गीतमाला की तरफ से, आज है माँ का दिन, मदर्स डे, और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं गीतमाला की तरफ से। माँ का नाम लेते हुए ये गीत है माँ के ही नाम पर, माँ पर अर्पित ये गीत।

तमाम खुशियों को कर देता ये गीत है माँ के नाम पर। लाडला फिल्म से ये गीत है समीर की लेखन और आनंद मिलन के संगीत में, उदित नारायण के साथ ज्योत्सना हार्दिकर की आवाज़ों में। अब प्रस्थान करते हैं हमारे जो कार्यक्रम है, आज का जो कार्यक्रम है संगीत धमाका। और ये अगला संगीत धमाका बयां करता ये गीत है पंकज सरावगी के गायन में और ललित सेन के लेखन और संगीत में।

दोस्तों, अगला जो गायक है वो है केजे येसुदास। एक पुख्ता सबूत है हिंदी सिनेमा जगत का, आवाज़ का प्रतीक है, जो गा चुके हैं ये सब गीत जो आप जानते हैं, जैसे जब दीप जले आना, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। और वैसे ही प्यारा ये गीत भी है ललित सेन और महबूब के लेखन में। संगीत निर्देशक हैं ललित सेन, और इसमें इस गीत में नज़र आई थी एक अभिनेत्री जिनका नाम है रिमी सेन, जिन्होंने बखूबी से अपना रोल निभाया था फिल्म हंगामा में। वैसे ही प्यारी, वैसे ही चंचल रिमी सेन इस गीत में भी है।

दोस्तों वैसे तो खुशियां हम मना ही रहे हैं मदर्स डे के लिए, और इस गीत के साथ गीतमाला अपनी मदर्स डे मनाने जा रही है आप सबके साथ। जोजो की आवाज़ में ये गीत है, राजेश जौहरी के लेखन और तबून सूत्रधार के संगीत में, और इसमें जो अभिनेता दिखे थे जिम्मी शेरगिल, याद कीजिएगा उस चेहरे को।

ये है संगाई चैनल और इस चैनल में अभी आप सुन रहे हैं गीत माला की तरफ से संगीत धमाका और संगीत से भरा हुआ धमाका देने जा रही है सुचित्रा कृष्णमूर्ति जो इस गीत की गायिका और नायिका है। अरुण राज की रचना और रहमान राज के संगीत में ये राज छुपा हुआ ये गीत है।

और दोस्तों 90s के हिट पॉप सॉन्ग्स के साथ ये और एक और हिट नंबर है उस वक्त का, सुना होगा आपने नाम, ये नाम बहुत ही मशहूर है, बॉम्बे वाइकिंग्स, नीरज श्रीधर और उनके ही बैंड का ये प्रस्तुतिकरण है उनकी ही रचना और संगीत में।

ये था रविवार का संगीत, धमाका धमाकेदार संगीत के साथ आप ही की साथ में, और साथ निभाने हमारे दोस्त आ रही हैं अगला कार्यक्रम लेकर मैरीना, उनके साथ रहिएगा, गाइएगा और दीजिएगा हमें इजाजत। नमस्कार।

0: through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam. Punjab's Industry Minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है
0: The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being.
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग मेंटल हेल्थ योग मेडिटेशन इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है
0: Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building. The Prime Minister also launched the year-long projects of the Foundation on Mental Well-being, Rural Development, Nature Conservation and Social Transformation. Before proceeding to the Art of Living International Centre, the Prime Minister addressed BJP leaders and workers at HAL Airport in Bengaluru. The Prime Minister said BJP's victories in West Bengal, Assam and Puducherry reflect public support for the centre's policies and programmes. He said that people want a government that delivers good governance and fast solutions.
1: भारत की जनता कह रही है कि हमें पीड़ चाहिए, हमें गेम नहीं, solutions चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए साथियों आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटक तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है
0: Attacking Congress, the Prime Minister accused the party of opposing the Nari Vandan Sanshodhan Bill in Parliament.
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी बड़ा खेल चला करता था बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया लेकिन साथियों कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया
0: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9400 crore rupees in Telangana The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. He will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. State-of-the-art institution in Hyderabad

अंगांगी थोरम ताबिरे आकाशवाणी इम्फाल हौसीग मुक ताबिरे से रेडियो क्लास चनी निफुनिपान सुब तांकता क्लास एट के साइंस सब्जेक्ट के लेश नंबर 16 थोरम से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर की तेंगबांग लोइनना संदोक चब थोरम ने हौसीग लोबिरे से रेडियो क्लास चनी निफुनिपान सुब तांकक

0: 예우도 아다기 농복 탕바진도 한다기 누민 나탑 나탑 나리 칼락도나 토레이세 바자자 예우네도
1: 아시디 양 바자해 아이디 나한 가이브 숭 오브 우데네 시디 아
2: 세세세 마탐 마탐 이 마퉁이나 누민 나 아왕롬다 아묵 사칵 마카롬다 아묵 핵사타 떠오르나 핵 토이벤 아 마두기 바자부수 동안 동안 마몽다 좀 레이
0: नुमित ने थोलक पसी मफम सुम होंग होंग दुना थोलक पोइरा
2: कालेन गी मतम दा नुमित ना अवांग लुम दा सुम सखल ग थोई अदुगा निंथम था गी मतम दा ने नुमित ना मखारो न सथ दुना सुम थोई को
3: ओ बाबा हाउ ने जिक्सी कालेन मतम निना नुमित ना थोक लिबा मफम सिदा गी कयाम ना अवांग लुम दा सखल ग थोक दोइनो
2: सिदा गी येंग बदा दी अवांग म सिंगदोल सिदा गी ने अवांग लुम दा काकतुना थोरोइदा
0: ओ अदोय दिनिंग थम था मतम ददी नुमिना कदाय वे फाव मखारम द जथरग थोक तोइनो
2: ये वतु आ मखारम दा फने आम न जथरग ने आ खर वांग खत पचिंग दो लम लेरि सि उरा
0: उरे
3: उरे
2: आ निंग थम था मतम ददी नुमिना मखारम गि सिंग दो लो साय फाव बा खारम द सुम सते गि दन थोई को सिंग म मतम ददी
0: ओ
2: ला ला ला खर थुले युम यों न बचला सि नुमित मंगाल नमाय द डायरेक्ट येर ग सुमाइना लेबसे सबदि अनु आइतबनि लाइसासा
3: होय नुमित मंगाल नमाय द येबसिदि कै नोम तोयबसिदि
2: ला ला
0: अस थुने युम याउ दराबनिना इमाने सेमबा अचापोर अमु चावरनि ने
3: आहा वकरी कै नो अचापोर सेमम रति याम फगरनिदा
0: ला
2: ला

आकाशवाणी इम्फाल केट्रीमयुम चित्रवानु नपाउ पाजरी आहान बदमरु ओइबा पाउ सिक्योरिटी फोर्स न थासि गि मरि देगि गसि फाउ बा बंकर तरात्रुक थुगाय ख्रे तोंगान तोंगान बला लुलुप सिंगि मियो सिंग फागले मणिपुर ङा सिमालेंगि इमागि निमि के पालन थरम पाक्सन पंगथोक नरि असम द हिमंत विश्व शर्माबु राइज विधानसभा द एनडी गि लुचिंगबु ओइना खल्ले हाइन केन्द्र गि मंत्री जेपी नदाना लौथोक ख्रे तमिलनाडु द टीवी के लुचिंग बसी जोसेफ बिजे राज्य दु की मुख्यमंत्री ओइना वासक लौख्रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई असम नोंचुक बंगाल पुदुचेरी बीजेपी माइ पाक की सरकार की थौसल थौरांग मियाम सौगुले उत्प की खुद सिक्योरिटी फोर्स न राज्य के तोान तोब मफम तीहुम की थब लेप चथरी हेडक्वार्टर्स आई जी आर सौन थोप चेरोल हाई असम राइफल्स मणिपुर पुलिस थासी फाव चथब तीहुम की थब बंकर तरातुक थुगाख्रे एस एम जी कारबाइन बॉल राइफल मरी 9mm पिस्तोल 12 बॉल गन नोमई कुंथ्रा फागत की लालोलुप सिंह के वाई के एल के सी पी पी एस सी प्रिपा प्रो प्रिपा के वाई के एल सैरोपा के सी पी अपुनबी मोय तरह लुप लाख तरुक हेनबग अटे पोलम क्या लोन फागत की फागल मोयद पोलम मरी लेना पुलिस स्टेशन सिनख्रे मणिपुर यौन मालें मफ क्या इमागी की पालन थोड़म पांथोनरी ममा ओबी कथोप खुनाई इमु मनुंग पीरिबा दानबु सखंग इकाई खुमना उत्पोइना चेही खुदिंग मे थागी अनिसुब नोमाई जिंग इमागी पालन थोरम पांथोकनरी सेंगलब मरी लेनेना सोशल मीडिया की खुथांग मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ममा ओबी पुनमुक की मफम इकाई खुमना उत्पग लोनेना याफा पाउजल पीरी मा की पाउजल श्री खेमचंद हाय ईश्वर ना मफम खुदिमक्त यौब गमदबना महाद नुशीब शक्ति मसाब थादोना कथोप की सकम इमाबू पीबीरी अगुब थोद हेंदोलब मनुसीग लोनेनाखोद मंगाल पीबीरीब इमा खुद इकाई खुमनाब लोनेनाब उल्लू मुख्यमंत्री मांग पाउजल इमागी की पालन थोरम बिष्णुपुर जिला की इरेंबमद यूथ फॉर चेंज ओइनाम केंद्र ने सुन पांथोप लोनेना इमा खुदपुर पीदना इकाई खुमना उत्खी निमित पालन थोरम थमेब सिनाम लेकायब हिल साइड चेरीटेबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने सिंह हॉस्पिटल पांथोखी थोरम से लुवांग चंबम चिंगोल लेकायब यूनाइटेड बैप्टिस्ट चर्च टाइगल खोबान तुपो ग्राउंड पांडम याफा मरूप तुपो क्लब वबगाय अवंग लेकाय सोशल लाइब्रेरी कम इन्फॉर्मेशन सेंटर वबगाय अवंग लेकाय प्राइमरी स्कूल की हॉल पांथोखी नोने जिला की लोमई पार्ट फोर द बैप्टिस्ट चर्च बैप्टिस्ट यू फेलोशिप सिंधुना मालें इमागी पालन थोरम पांथोखी थोरम से बाबूपुरा एम एल ए दिंगांगलों गांगमई लेफमद पांथोखी की पालन थोरम असम राइफल्स सिंधुना टेंगनोपल पलें कामजों पांथोखी मदुद तोहान तोहानब कांगलू सिंह इमा महरू सरुक याखी मालें इमागी कमरी लेनेना लाइफ सेवर मणिपुर लमदों अपुनब नहरोल स्पोर्ट्स एसोसिएशन फॉर द विजुअली अम्पर मणिपुर पुन सिंधुना डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन रिम्स इमागी मफम कच्चब वॉलंटरीबल डोनेशन कैम पांथोखे मरी लेनेना साइबो हॉस्पिटल रे फाउंडेशन ले मचनु नवा

0: आकाशवाणी फाल्गी एफएम संगाई चिल दुना तोान तोान मखल मथेल थोरम सिंताबीरी संगाई चिल हुजिक मथंगी थोरम फंबीरगनी
1: आकाशवाणी फाल लांथोक्सरी पाउगी सक्तम

पाओ की सकतम ताबीरे ताबीरी बस आकाशवाणी इम्फाल की मेगाहर सामगुन दशमी मंगार संदोक चरीबा एफएम संगाई चैनल ने संगाई चैनल द हुजिक ताबीरी बपुनम की दमक पूर्दुना लाक्षरी गुड इवनिंग मणिपुर।

0: अमरूप दत्त ताजमहल गुंबन ने अब अदबू आर्किटेक्चरल डिजाइन सी खरा मानव मानव मई कया हुई अडुगा सिने मोस्ट नीदन को अदुदा ख्वाइदगी नुआइब इंटरेस्टिंग हुई पोट सी पैसा करी नो दुगा चंगना रिपेयर तौरी से हाइबदिदा मतमदि कम्युनिस्ट पार्टी की सासोन मखादले अद धर्म में याई याती है भी करी गुंबदा कम्युनिस्ट सिंह सिलाई याती गायने हाइजन बसुआ हुई मधु मधी मधु तो फजन प्रूफ तो हुई मोहिना करी की नुमोई मिलियन के आ चंगना लुपा करोड़ के आ चंगना मधु दा तो इधर कर माइंड तो गया दा हाने की अरी बमोई की आर्किटेक्चरल डिजाइन है तू ओरिजिनलिटी तू हम भंगना बहुत ना बता सना किलो चामरी के यंग कही मधु ना फुट लगा मधु तो पेन तो अत करी की नो सुगम पैसा चंगली से सीधी कोई अरी बा पोट अदु कोई ना प्रिजाप तो जब नहीं पाए पुगी थान बा पोटु मांगन नहीं देता मशीन तो पैसा चंग बसे चंग बम थोई वी वांट टू प्रिजाप द ओरिजिनल थिंग्स क्रिएटेड बाय आवर फोर फादर्स पाए पुना तो वीरम पोटु है कया आदि पुनिंग नुसी मधु माइना तो ये दुग मागी रेजिस्टेंस स्क्वायर निंथाउ पालम बगी मधु की अरी बा अभी टेन टी इलेवन सेंचुरी वाली
1: मुस्लिम की आर्किटेक्चर से मानव खर लाई अरे कोई की से खुद मैंने कुतुब मीनार अरे की कोई की रेड फोर्ट मनुंग दस ले रही कि टोम मचा मचा बस इधर ले रही पा आर्किटेक्चर की डिजाइन सी का बस मफ़म इधर ले रही सी का मानव याऊ ब्रा
0: घर का मानव याऊ ही ये अंबद अरी बगी पोट ऐसी मध्य हाइपेट मानन उरे स्पेसिफिक वे खरा दा खेने जरग सुए आर्किटेक्चरल डिजाइन में दी मानव सी उब फंगे
1: अदगा तो पा मना हो सा कि मुस्लिम की आर्किटेक्चर से दा इस्लामिक आर्किटेक्चर याम को पा याम ना डेलिकेट वे बा पो नम से यारी मचु संग मदा फोट पदा हक पदा
0: अदु दने सा कि सना वन गोल्डन कलर दो मदु सना सी की असेंग बा मदुन पेन तो बनी है ना ओनोंग ना सेक्शन ना तो ग्रे मदु मदी आई पुंसी द ओंटों ने सेक्शन ना तावी द को आई बस ये फील तावी मारम दी मौजी एक्सप्लेनेशन दूध न तना एक्चुअल वर्क डन दू ये
1: हमका चना के जी चमरी हैं भाई
0: चमरी यंग है
1: या उंग रहे ने चना अदु लोग अगर अते इधर करी करी यंग भी रहे
0: यामी मधु दी लास्ट पार्ट नी मधु दी लास्ट पार्ट नी चाहिए चेक तकी कीप ताना हान लाग बसी मधु की ट्रेन की जर्नी तो मधु सु कोई नहीं आए बोल मरम दी अहिंग सिलान चतुरी ने अदा चेक की रिपब्लिक मनुंग ले बा रेलवे ट्रैक सी का सोवियत यूनियन लांच लग पगी ट्रैक सी अनिश चौब मान दिया ट्रेन दी मी चात्रे जंग कई तो ट्रेन दी कोई नहीं मोंडुम मोंटी एक नहीं तो मां चुम न भाम न बनती चानना बर्ड मी का अमद केबिन अमद मी मरी मरी खकी मधु मोस्ट मॉडर्न ख्वाइदगी नुआई बा अहिंग ट्रेन अदुना मत मधु दी एरोप्लेन भरा दगी दी उसी की नाइट ट्रेन से सीनी हेन एक्सपेंसिव ओई
1: एम नुआई ना
0: याम नुआई ना सब अरे कोई दी पैसा दी टिंग ट्रेन को मैं पीस कमिटी ना मतंग मतंग सिंगी बनी मैं ट्रेन मनुंग ऐसी दा चान थक ना बसी चिकन से तंखाई तंखाई नी को मपुम मपुम ताऊ रगा तंखाई अम मम्मी अम की मधुगी करी कहीं लीली अचेपी मचा मचा गए थनमी आई याम ना कम्फर्ट दू नुंगदांगी डिनर दू पूरा प्रिपेयर तौर पैकिंग पैकिंग तौदना थनमी अदुना अहिंग मोंगयाय मतुंग पुंग मा अनि सिगी मरकता चेक की बॉर्डर असि लालदना सोवियत यूनियन चंगदोरीबा बद ट्रेन जी सिंदोरी नि तोंगी ब ट्रेन जी दी पैसेंजर अमत कुमल लोई दोरीबा मखा की ताली से मसी की मा की करे है नहीं रेल दो मसी हाइड्रोलिक यूरोप ते दी मोशी हाइड्रोलिक प्रेशर की मसी की टेक्निक सी हम एडवांस हुए रहे हैं ना मोइना हाइजी
1: मसी कनो कोई की चेक ते की लाइस ने पिक पा
0: चका सी मा की सामने है तो मीटर गेज का ब्रॉड गेज की खेने बदो
1: चेक ते की लाइस ने पिक पा
0: पिक पा
1: सोवियत चंग अगर ना
0: चाउथोक तो ट्रेन दिया मा करते नहीं को अदुना मोइना उसी की लानभम सीधा करा मायना तो बनो मेकानिज्म दो उसाई की कहनो उसी हाइड्रोलिक प्रेशर ना रेल की दबा में आम सी पम्मग मतलब लोइन थांगा खराब

लता मंगेशकर मदि ए आर रहमान के पुनः खंजेल दा गीत ताबी रे खोंले थुना होंगल लिब मतम गि आवल सिदा इमा बुंदिंग सिंबा माकी मफम दा इकाई खुमने ब उत्पा इमा गि सेवा तोबा हाइरि बसिंग असि नसी नो मखक्त मक्की वारी ओइदुना लेहुरगद्रा मे थागि अनि सुबनोमाइजिंग असिना लाकपदा व्हाट्सएप की स्टेटस रस्ता फेसबुक की फिट स्टोरी दा टिकटॉक की वीडियो पोस्ट तौरगा असुमक लोशिन की बसु याउदबन लमलोय अदोमसु खनबियु करंब कांगप तदोम याउबिदिबु गे हाइबदु नेसिंग बियु अदोम गि चोंग लिबा थामोय गि मिहुन खुदिंग गि मिहुन खुदिंग मकी वाजरिबा इमाम हाकी थामोय ने इमाम हाकनी

0: कैसा लगा मामा?
1: क्या
0: मेरा गाना, मेरा पहला परफॉर्मेंस?
1: अरे सुनाई कहाँ दिया ये नालायक विवेक, बैटरी लाना ही भूल गया।
0: क्या यार विवेक?
2: अरे क्या भैया, मुझे क्या बोल रहे हो? आपको लाने को बोला था ना बैटरी।
0: वही काम सब तो मैं ही करूंगा ना मामा, तू लाओ इधर। चलो मामा जल्दी लगाओ।

10:30 लीजिए, 31 मिनट हो चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. स्वागत है आप सबका प्रोग्राम हर सिंगार. हर सिंगार पे मैं आपके साथ विकास.

फिल्म का नाम है संतोष और गीत लिखा है संतोष आनंद ने। म्यूजिक तैयार किया था इस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और जब हम किसी गीत को सुनते हैं ना, और सुनते सुनते उस गीत में जब खो जाते हैं, तो अक्सर हमें ऐसा भी लगता है कि इस म्यूजिक डायरेक्टर की एक अपनी स्टाइल है। और अगर आप किसी गीत को सुने और उसके बाद थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें और ये अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि आखिर इस फिल्म में इस गीत के लिए किसने संगीत दिया होगा, तो इस प्रैक्टिस को जब आप लगातार करते हैं ना, तो आपका कई दफा अंदाजा सही होने लग जाता है। और वो इसीलिए क्योंकि वो जो स्टाइल होता है वो उस संगीतकार का होता है। और हाँ, इस स्टाइल के साथ कभी कभी धोखा भी हो सकता है हमें, जब हम किसी गीत को सुनते हैं और हमें लगता है कि ये खास स्टाइल तो किसी दूसरे संगीतकार का रहा और इन्होंने शायद उस संगीतकार का स्टाइल अपने इस गीत में इस्तेमाल किया। फिलहाल अगला गीत एक बार फिर संतोष आनंद साहब का कंपोज किया हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का, और फिल्म का नाम है शोर। 1972 की यह फिल्म, जिसके लिए संतोष आनंद साहब को हमेशा याद किया जाता है। प्रोग्राम का नाम है हरसिंगार। हरसिंगार में मैं आपके साथ विकास।

फिल्म का नाम था सोनल जी। ये 1973 की ये फिल्म थी और जब मैंने इस फिल्म का पोस्टर देखा तो पहले पहल मुझे लगा कि जो अदाकार हैं, फिल्म के एक्टर हैं, वो शायद जितेंद्र है। लेकिन उसके बाद जब मैंने इनके क्रेडिट्स देखे तो देखा कि ये तो जितेंद्र का नाम ही नहीं है इस फिल्म में, और मल्लिका साराभाई के साथ इस फिल्म में नजर आते हैं कोई और जिनका नाम है जतिन जी। जतिन खन्ना इन कलाकार का नाम था और इस फिल्म में म्यूजिक दिया था मन्ना डे साहब ने और गीत लिखे थे योगेश ने। और दिलचस्प सी बात ये रही कि 1940 और 1950 के दौर में कुछ फिल्मों में मन्ना डे ने संगीत दिया था और उसके 13 साल बाद इस फिल्म के जरिए उन्होंने संगीत की दुनिया में एक बार फिर कदम रखा। लता जी का गीत था और अब बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार।

फिल्म का नाम था शोला और शबनम. 1962 की ये फिल्म थी और फिल्म में म्यूजिक था खयाम साहब का और गीत लिखा था कैफी आजमी साहब ने. आज की तारीख यानी 10 मई 2002 को कैफी साहब हमसे अलविदा कह गए, लेकिन उनके गीत हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे. बना रहेगा आपका और एफएम गोल्ड का साथ. और घड़ी बता रही है कि बस अब आखिरी गीत पहुंचा सकता हूं इस कार्यक्रम का आप तक. तो लीजिए, अमीर आदमी गरीब आदमी फिल्म का ये आखिरी गीत पहुंचता है आप तक.

जी जो आपके दिल में रहते हो उनका भी आप ख्याल रखिएगा, और रखिएगा उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल। आज के लिए बस इतना ही, विकास को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना

0: परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एम के स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: महत्वपूर्ण उज्जैन रिनपोचे के मार्गदर्शन में काम हो रहा है। यह संस्था ध्यान और करुणा को लोगों के जीवन से जोड़ रही है। कोची गुआज घाटी में बना स्तूप लोगों को शांति का अनुभव कराता है। वाकई यह देखकर गर्व होता है। भारत की प्राचीन धारा दुनिया तक पहुंच रही है। दूर दराज के लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। साथियों, बौद्ध परंपरा हमें प्रकृति से जुड़ना भी सिखाती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान एक वृक्ष के नीचे मिला था। प्रकृति हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देश में भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं। कर्नाटका में कर्मा मोनेस्ट्री इसका अच्छा उदाहरण है। यह मठ एक जीवंत वन क्षेत्र है जो 100 एकड़ में फैला है। इस वन में 700 से अधिक देसी वृक्षों को संरक्षित किया गया है। साथियों, बुद्ध का संदेश सिर्फ अतीत नहीं है, यह आज भी प्रासंगिक है और भविष्य के लिए भी जरूरी है। हम अपने जीवन में शांति बढ़ाएं, करुणा अपनाएं और संतुलन के साथ आगे बढ़ें।
1: तो ये थे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक शब्द। और आइए अब हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन की। हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने दो विशेषज्ञों को और इनके माध्यम से आज इस विषय के बारे में हम अपनी समझ बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं स्वागत कर रही हूँ प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम जी का। आप बौद्ध अध्ययन विभाग नव नालंदा महाविहार संस्कृति मंत्रालय नालंदा में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं स्वागत कर रही हूँ सतीश कुमार जी का। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आपका है और बौद्ध दर्शन की जो शिक्षा है वो आप युवाओं तक पहुँचाते हैं अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। सतीश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत साधुवाद।
1: बौद्ध दर्शन की जो समसामयिकता है वो क्या है, और ये मैं जानना चाहूंगी प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम आपसे।
3: देखिए, बौद्ध दर्शन स्थान और समय के कारण परिवर्तित नहीं होता, ये समसामयिक है
1: जी।
3: जिसको हम कहते हैं कि स्पेसियो टेम्पोरल गैप के कारण इसमें कोई परिवर्तन आता हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अब हम बौद्ध दर्शन है क्या, इस पे बात करते हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करते ही कहा था, यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा आता पिनो जायतो ब्राह्मणस्य अथस्य कंखा बपयन्ति सब्बा यतो पजानाति सहेतु धम्मं। मतलब जब धर्म का सही स्वरूप किसी भी ध्यानी के समक्ष प्रकट होता है
1: जी,
3: तो उसकी सारी शंकाएं खत्म हो जाती है और वो जान जाता है कि सारी चीजें हेतुओं से उत्पन्न है, कारण से उत्पन्न है
1: जी।
3: दूसरी जगह उन्होंने कहा कि द्वे इमे भिक्खवे देशेमि दुखं च दुख निरोधं च। भिक्षुओं, मैं केवल दो ही बात करता हूँ, इस संसार में दुख है और उस दुख का समाधान है। इसके बाद उनके एक प्रमुख शिष्य ने भगवान की बात को अपने सहयोगियों के समक्ष रखा, वो था ये धम्मा हेतु पहुआ तेसंग हेतु तथागत हुआ
1: जी।
3: तेसंग च यो निरोधो एवं वादी महासमनोति। ये जितने भी इस दुनिया में जो भी कंस्ट्रक्टेड चीजें हैं, जो निर्मित चीजें हैं, वो सभी हेतुओं पे कारण पे आधारित है
1: जी।
3: उस कारण को समझ लो, जान लो, समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध ने ऐसा कुछ कहा जिसकी प्रासंगिकता हर युग में, हर काल में और हर स्थान पे उतना ही समीचीन है
1: जी। यानी हर जगह वो दर्शन अभी भी है, वो शिक्षाएं अभी भी हैं जी। तो सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी आधुनिक युग है, इसमें कॉर्पोरेट को और कॉर्पोरेट कल्चर को ऐसा देखते हैं कि भागदौड़ भरा एक कल्चर है और बहुत ही प्रतिस्पर्धा है और जिसमें बस किसी भी तरह हम जो हैं बहुत ज्यादा मोनेटाइजेशन के बारे में सोचते रहते हैं। आप क्योंकि ट्रेनिंग देते हैं बौद्ध टीचिंग्स की कॉर्पोरेट्स को, तो मैं जानना चाहूंगी आपका अनुभव कि किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिलती है और आपको क्या लगता है ये क्यों जरूरी है।
2: जिंदगी की भाग दौड़ और धन कमाने की आपाधापी में जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वह मानसिक रूप से विभिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होता जा रहा है, जिसमें मानसिक तनाव का होना बड़ा ही सामान्य प्रतीत होता है, लेकिन मानसिक तनाव विभिन्न प्रकार की बीमारियों का मूल कारण बन जाता है। चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, चाहे हार्ट डिजीजेज रही हो, यहाँ तक कि स्ट्रोक, और कई बार तो डिप्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि हम घर परिवार और रोजगार में सामंजस्य

0: स्थापित करने में हम असमर्थ महसूस करने लगते हैं और केवल कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही नहीं अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी और परिवार को जाने और समझे तो हम पाते हैं कि बच्चों की अपब्रिंगिंग में भी हम कई मूल समस्याओं का सामना करते हैं जो विशेष रूप से मानसिक रूप से जुड़ी हुई है। हम लोग इफेक्टिव पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस तरह के विचार उस तरह के थॉट्स हमारे मन में नहीं आ पाते हैं क्योंकि आज का जो दौर हो गया है एक तरफ हमें धन कमाना है दूसरी तरफ हमें बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखना है तीसरी तरफ परिवार और परिवार के सदस्यों में आपस में संतुलन बनाए रखना है तो इसे वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं तो बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसे में जब मैं धम्म की तरफ देखता हूँ बुद्ध की तरफ देखता हूँ बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों को समझने का प्रयास करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि सबसे पहले मस्तिष्क में विचार ही आते हैं
1: जी।
0: ये जो विचार आते हैं विचार मनुष्य को प्रेरित करते हैं कोई एक्शन लेने पर कोई ना कोई तो एक्शन होगा क्योंकि जो विचार है वो एक बीज के जैसा है अगर उस बीज को सही पानी मिल जाए सही मिट्टी मिल जाए सही मौसम मिल जाए तो वो एक जो बीज है वो पौधा बन सकता है लेकिन समस्या ये है क्या उस बीज को मैं पहचान पाया क्योंकि अगर वो जहरीला बीज है तो वृक्ष भी जहरीला होगा और अगर वह अमृत तुल्य बीज है तो अमृत से भरा हुआ होगा जो केवल हमारे परिवार का नहीं समस्त समाज का कल्याण कर पाएगा तो वो जो विचार है वो विचार एक्शन में तब्दील होगा और जब एक्शन होगा तो उसका प्रतिफल भी आएगा तो प्रतिफल दो तरह के होंगे या तो सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे अगर तो नकारात्मक प्रतिफल है तो हमारा जो प्रोसेस है वहीं रुक जाएगा लेकिन अगर हमें सकारात्मक महसूस हो रहा है तो फिर मैं रिपीट करूंगा एक्शन को लेकिन अगर शिक्षा लेने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है तो शिक्षा को भी मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा तो ऐसे में जब रिपीट एक्शन होता है तो वो आदतों में तब्दील हो जाता है फिर ये आदतें लगातार बनी रहती हैं तो ये आदतें आपके चरित्र का निर्माण कर देती हैं जब चरित्र लगातार बना रहता है तो वह आपके भाग्य का निर्माण कर देता है तो यही बुद्ध हमें समझा रहे थे कि मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं अगर वो शुद्ध हैं तो मेरा आने वाला भविष्य शुद्ध हो सकता पवित्र हो सकता है लेकिन अगर मेरे विचार अशुद्ध हैं तो मेरा भविष्य भी अशुद्धि की तरफ बढ़ रहा है
1: जी यानी अपने विचारों को देखना हमें भगवान बुद्ध जो है वो सिखाते हैं जी और कॉर्पोरेट में हर तरह के जो परिवार हैं वो जुड़े हैं और आप उनको ये सिखाते हैं
0: जी।
1: तो प्राण पुरुषोत्तम जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी जब हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की तो एक शब्द जो है वो सहज ही मन में आता है शांति जब कभी हम उनकी छवि भी देखते हैं तो वो इतनी शांत स्वरूप है कि उसको देखकर शांति का संचार होता है मन में और आज का जो युग है आपाधापी का है और हम देख रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो संघर्षों में घिरे हैं और कई तरह की प्रतिस्पर्धाएं भी चल रही हैं ऐसे में जो बौद्ध दर्शन है इसका क्या महत्व है और क्या ये आज ज्यादा जरूरी हो गया है या समय के साथ इसका प्रभाव कम होता गया है
2: आपने अभी दो बिंदुओं पर प्रकाश डाला है
1: जी
2: एक व्यक्तिगत शांति की बात की और दूसरी बात आपने ये कहा है कि दुनिया में इतनी अशांति फैली हुई है युद्ध की स्थिति बनी हुई है देखिए दोनों दो बातें हैं बुद्धिज्म में बौद्ध दर्शन में और बौद्ध अध्ययन में इसके तीन सोपान हैं पर्यत्ति पटिपत्ति और पटिवेधन पर्यत्ति के तहत हम थ्योरीज को जानते हैं पटिपत्ति के तहत हम उसको अभ्यास करते हैं प्रैक्टिस करते हैं
1: जी
2: और पटिवेधन के स्थिति में उस स्तर पे हम रियलाइज करते हैं तो जब हम अपने मन को ये चीज उपनिषद में भी है
1: जी
2: जिसको हम कहते हैं नॉन माइंडिंग प्रोसेस अमनी भाव में होता है कि जब आपका मन निरंतर चिंतनशील है
1: जी
2: अगर आपके पास एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि नहीं है तो आपका चिंतन ज्यादातर निगेटिव दिशा में जाएगा और जब वो निगेटिव दिशा में जाएगा नकारात्मक दिशा में जाएगा तो वो आपके हर सेल को प्रभावित करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो निगेटिव आएंगे और आप पूरी तरह परेशान हो जाएंगे तो उसके लिए क्या है कि हमें थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए और काउंसलिंग जो है स्पिरिचुअल काउंसलिंग होनी चाहिए
1: जी
2: हमें किस तरह की चीज सोचना है हमें क्या सोचना है ध्यान कैसे करना है और चित्त में शांति कैसे बना के रखना है क्योंकि भगवान बुद्ध ने एक जगह और जब उनके धर्म को कंक्लूड किया गया
1: जी।
2: तो वहां कहा जाता है सब पापस अकरणं

0: हर तरह के पाप को छोड़ देना नहीं करना
1: जी
0: कुशलस्य उपसंपदा मोरल टेंडेंसीज को बढ़ाना सचित्त परियोदपनं प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर ओन माइंड अपने चित्त को परिशुद्ध करना सचित्त परियोदपनं एतान बुद्धान शासनं यही बुद्धों का शासन है तो सील का पालन करते हुए मोरलिटी का पालन करते हुए मोरल प्रिसेप्ट्स का पालन करते हुए
1: जी
0: आपको अपने कॉन्शियसनेस को चित्त को परिशुद्ध कर लेना चाहिए व्यक्तिगत शांति इसी में निहित है आपकी दूसरी बात थी
1: जी
0: विश्व में इतनी अशांति क्यों फैली हुई है एक कॉन्सेप्ट है विपल्लास विपल्लास जो कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं किसी चीज को उल्टा देखना जिसमें अशांति है उसमें हम शांति ढूंढते हैं जहां दुख है उसमें हम सुख ढूंढते हैं आज पूरी दुनिया अगर मानवता पे केंद्रित हो जाए ह्यूमन सेंट्रिक हो जाए तो तरह तरह के जो विध्वंसक हथियार हैं वो बनने बंद हो जाएंगे कोई भी वैज्ञानिक जब कोई विध्वंसक हथियार बनाएगा उसके पहले सोचेगा इसका उपयोग कहाँ होगा उपयोग मानवों के ऊपर होगा क्षति किसकी होगी मानव की क्षति होगी वो उसी दिन उसको रुक जाना चाहिए बनाना क्या चाहिए ऐसी ऐसी दवाओं का आविष्कार करना चाहिए जिससे कि व्याधियों का नाश हो दुखों का नाश हो ऐसा तो हो नहीं रहा है और हम जबकि जो भी चीजें हैं वो सब खत्म हो जाने वाली है
1: जी
0: अगर हम टेरिटरी आज इतिहास गवाह है सिकंदर ने भी टेरिटरी जीता सब ने टेरिटरी जीता किसी के पास आज वो नहीं है इस सत्य को इस तथ्य को पूरे दुनिया के शासकों को ध्यान में रखना चाहिए सभी चीजें नश्वर हैं क्षण प्रति क्षण परिवर्तनशील है
1: जी
0: इसीलिए अगर हम इन मुद्दों पे युद्ध की स्थिति लाते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है एक मनुष्य का सम्मान करना चाहिए समाज का सम्मान करना चाहिए और देश का सम्मान करना चाहिए समस्याओं का समाधान बुद्ध दर्शन के अनुसार बौद्ध अध्ययन के अनुसार अपने आप खत्म हो जाएगा
1: जी वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत से अवसरों पर कहा है कि ये युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती है ये कहा है मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी जब हम कहते हैं कि बौद्ध दर्शन जो है ये भारत से उपजा है और पूरी दुनिया में फैला है हमने दुनिया को भगवान बुद्ध दिए उनके दर्शन दिए तो ऐसे में क्या वजह है कि हम दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वहाँ ये पाते हैं कि व्यवहार में जो बौद्ध दर्शन है उसकी सीख है लेकिन भारत में कभी कभी हमारा अपना जुड़ाव जो है इनसे नहीं रहा है क्या वजह आप पाते हैं
0: देखिए ऐसा नहीं है ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है कि भारत में बौद्ध नहीं है
1: जी
0: भारत की भूमि कभी भी बौद्ध विहीन नहीं रही है
1: जी
0: आप जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं सिक्किम में मणिपुर के कुछ हिस्से में लेह लद्दाख में वहाँ की अधिकतम आबादी जो है वो बौद्ध आबादी है एक तो ये बात
1: जी
0: इसीलिए अगर ये हम कहते हैं हाँ स्थान परिवर्तन हुआ है शिफ्टिंग हुआ है
1: जी
0: लेकिन खत्म नहीं हुआ है दूसरी बात कि जब पूरे भारत में बौद्ध दर्शन बौद्ध विचार लोगों के रक्त में समाया हुआ है
1: जी
0: जब आप कोई भी अनुष्ठान करते हो तो आप बुद्ध का नाम लेते हो बुद्ध को स्वीकार करता है पूजन करता है यजन करता है तो इस तरह से देखेंगे तो पूरे भारत के मानस में भगवान बुद्ध समाये हुए हैं
1: जी
0: और कुछ ज्योग्राफिकल एरिया है जहां बुद्धिज्म प्रत्यक्ष रूप से आदिकाल से आज तक है तो हम कैसे कह सकते हैं कि बुद्धिज्म यहां व्यवहारिक नहीं है प्रायोगिक नहीं है हम तो सील का पालन करते हैं हर भारतीय सील का पालन करता है हर भारतीय समाधि का अभ्यास करता है योग का अभ्यास करता है हर चीज का अभ्यास करता है हम कैसे मान लें कि बुद्धिज्म यहां व्यवहारिक नहीं है
1: यानी हमारे व्यवहार में है लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो अच्छी बात हम फॉलो करते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सहज शब्दों में हमें मिली है वो असल में बौद्ध दर्शन का हिस्सा है
0: बौद्ध दर्शन का भी हिस्सा है क्योंकि ये अच्छी बातें क्योंकि भारत का जो दर्शन है जो सनातन शब्द है जो सनातन परंपरा है न ही बेरेन बेरानी सम्मंतिद कुदाचनंग अबेरेन च सम्मंति एस धम्मो सनंतनो बैर से कभी बैर शांत नहीं होता मित्रता से बैर शांत होता है अब इसको किसी धर्म विशेष में बांधना उचित नहीं है भगवान बुद्ध के मुंह से भी यही बात निकला है और

0: सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये बात भी आती है
1: जी।
0: तो भारत की भूमि ही ऐसी है
1: जी।
0: हमने कभी टेरिटरी नहीं जीता है, हमने तो सिर्फ विचार फैलाया है, शांति फैलाई है, शील फैलाया है, समाधि और प्रज्ञा का विस्तार किया है। इसीलिए हम पर पूरी दुनिया, मानवता का इतिहास ये आरोप नहीं लगा सकती कि मैंने शस्त्र बल से कहीं कुछ भी जीता है
1: जी।
0: तो भारत की भूमि तो ऐसी भूमि है।
1: तो जो नैतिक मूल्य हमें, चाहे वो जातक कथाओं से मिले या माता पिता द्वारा सुनाई गई कहानी से मिले या बचपन में हम छोटी छोटी जो पुस्तकें पढ़ते हैं कहानियों की, कथा कहानियों की, उनसे मिले, वो बौद्ध दर्शन की भी बातें करती हैं और हमारे अन्य जो सनातन धर्म से जुड़े हुए अन्य जो दर्शन हैं उनकी भी बातें करती हैं। मैं यहाँ ये बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखूंगी। आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
0: चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा जाए।
1: बहुत ही प्यारा सा गाना आपको सुनवा रही हैं।

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बौद्ध दर्शन की समसामयिकता की। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम और सतीश कुमार जी। तो मैं सतीश जी आपसे सवाल करना चाहूंगी, कॉरपोरेट ट्रेनिंग जो आप देते हैं उसमें आपने हमें बताया कि बौद्ध दर्शन जो है उससे बहुत सारी चीजें लेते हैं और उन्हें कैसे हम प्रैक्टिकली अपना सकते हैं, अपने व्यवहार में उतार सकते हैं, ये आप सिखाते हैं। तो आपके सेशंस होते हैं अलग अलग जो विभाग हैं उनमें, मैं ये जानना चाहूंगी कि सेशन तो एक दिन का हुआ, दो दिन का हुआ, कैसे आप ये श्योर करते हैं कि जो आपने सिखाया है वो लोगों को समझ में आ गया है और उसके बाद वो व्यवहारिक तौर पर उसे फॉलो भी कर रहे हैं और इसका लाभ मिल रहा है उन सभी को?
1: मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बौद्ध दर्शन को या धम्म के सिद्धांतों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। रीजन क्या है, वो बिजनेस वर्ल्ड है। बिजनेस वर्ल्ड में जो हमारी ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग शुरू होने से पहले प्री टेस्ट होता है, तो सर्टेन टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पोस्ट टेस्ट होता है, तो पोस्ट टेस्ट में ये क्लियर हो जाता है कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले उनके क्या अंक रहे और ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद उनके अंक क्या रहे। अगर अंक बढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हाँ उन्होंने कुछ सीखा है, और अंक नहीं बढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि शायद वो समझ नहीं पाए हैं। तो ये तो एक सिद्धांत हुआ छोटा सा जिससे अंदाजा लगाएगा, परंतु धम्म की जो शिक्षाएं हैं उनको दो दिन में अगर सीख जाए ऐसा संभव नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि धम्म के सिद्धांतों को समझने के लिए उसे रेगुलर अभ्यास में लाना अति आवश्यक है। मुख्य रूप से हम कोई भी कार्य अगर करना चाहते हैं तो मानसिक शांति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है
0: जी।
1: और मानसिक शांति तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक हम विचार शून्य ना हो जाएं, और विचार शून्य होने के लिए हमें विपश्यना साधना करनी चाहिए। विपश्यना साधना बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, आनापानासति, सांस का लेना और सांस का छोड़ना और मस्तिष्क का ध्यान केंद्रित करना सांस की आवन जावन के ऊपर। उससे हम स्लोली एंड ग्रेजुअली मस्तिष्क को स्थिर करने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि जो मस्तिष्क है एक ऐसा जंगली घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे वो हमारे घर भी जा सकता है, वो बैठे बैठे वो बाजार में चला जाएगा, वो किसी मित्र से मिलने लगेगा। ऐसे में हमारा जो ध्यान है वो ध्यान नियंत्रित नहीं रह पाता। तो ध्यान को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी काम करें। मुझे अच्छे से याद है जब मैं छोटा था स्कूल जाता था तो मेरी माँ मुझे कहती थी बेटा ध्यान से स्कूल जाना। मम्मी ने कभी भी नहीं कहा कि बेटे ज्ञान से स्कूल जाना। जब स्कूल में हम पेपर दे रहे होते थे एग्जाम के समय, जो टीचर पूरे साल ज्ञान पढ़ाता था वो एग्जाम के समय कहता था बेटे ध्यान से पेपर करना। तो जब मैंने अध्ययन किया धम्म को तो मुझे पता चला कि ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान का गुरु ध्यान है। मैं कुछ कह रहा हूं अगर आपका मेरी बातों में ध्यान नहीं है तो मैंने क्या कहा आपको समझ नहीं आएगा। हम कोई मूवी देखने गए और मूवी में हमारा ध्यान नहीं है तो मूवी में चल क्या रहा है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, उसके कौन कौन से कलाकार क्या क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने अगर ध्यान नहीं दिया तो समझ नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं और माल बेचने की बात होती है, या माल बेचने के बाद किसी समस्या के समाधान की बात होती है, या फिर कस्टमर केयर या कस्टमर सर्विस की बात होती है, या किसी टेक्निकल थिंग की बात होती है, तो ऐसे में व्यक्ति को ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट ओनली कि जो है आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और सांस की आवन जावन पे ध्यान लगाएं, ये तो मस्तिष्क को स्थिर करने का एक

0: प्रैक्टिस है, बट रोजाना आपको एक काम कर रहे हैं तो एक काम करते समय उसी में ध्यान लगाने की आवश्यकता है, और ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, और ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए फोकस, ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए कंसंट्रेशन, ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, जो चल रहा है उसकी मुझे समझ तो हो,
1: क्योंकि यानी जो बातें हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा मानते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग का हिस्सा मानते हैं कि बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप कुछ करें और सहज भाव से, सजग भाव से करें और शांत भी रहें, चीजों को समझें, है ना, और अपने आप को भी जो है वो जज करते रहें, सेल्फ ग्रूमिंग करते रहें, वो सब जो है इनके बीज आप कह रहे हैं कि वो ध्यान में है और ध्यान जो है वो धम्म से जुड़ा है, तो ये शिक्षाएं जो है आप इस तरह से युवाओं तक पहुंचाते हैं। जी, मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, बहुत सारे लोग जो हैं वो, अगर हम बुद्धिस्ट स्टडीज की बात करते हैं, बौद्ध दर्शन की बात करते हैं, तो इसे रिलीजन स्पेसिफिक मानते हैं, कैसे बौद्ध दर्शन जो है वो धर्म से अलग है?
0: धम्म की जो शिक्षाएं हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात चली थी एस धम्मो सनंतनो, ये एक्चुअली धम्म है, धर्म है ही नहीं
1: जी।
0: जो धम्म है वो धर्म से बड़ी चीज है, धारण करे तो धर्म है वरना कोरी बात, सूर्य दिखे तो दिन है वरना काली रात। तो लोगों को धर्म ऐसा लगता है कि पूजा पद्धति धर्म है
1: जी।
0: लोगों को लगता है परंपराएं निभाना, रूढ़िवादिताओं को निभाना, संस्कारों को निभाना, परंपराओं को निभाना, उन्हें लगता है वो धर्म है। असल में धर्म बिल्कुल अलग चीज है
1: जी।
0: जिस तरह से अग्नि जलाने का काम करती है, पानी शीतलता देने का काम करता है, तो पानी का धर्म है शीतलता देना
1: जी,
0: अग्नि का धर्म है वो गर्माहट देती है। ठीक उसी तरह से जो मनुष्य का धर्म है
1: जी,
0: वो है करुणा, मैत्री, बंधुत्ता, उसके आचरण में, उसके व्यवहार में मानवता परिलक्षित होनी चाहिए। जब मनुष्य के मस्तिष्क की वो पराकाष्ठा उत्पन्न होने लगे जहां मनुष्य केवल मनुष्य प्रतीत होता है, जहां लिंग भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां जाति भेद समाप्त हो जाते हैं, जब भाषा भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां क्षेत्रवाद समाप्त हो जाता है, जहां रंग भेद समाप्त हो जाता है, जहां विभिन्न प्रकार की व्याधियां स्लोली एंड ग्रेजुअली समाप्त हो करके मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास कराती है, तो उस समय हम धम्म की गंभीरता को आचरण में धारण करने का कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन मनुष्य होने के बाद मुझे एक मनुष्य छोटा प्रतीत होने लगता है, तो वहां मिलावट आ जाती है, वो मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, वहां पर उसकी मानसिक अवस्थाएं विकृत हो जाती हैं, विभिन्न प्रकार की जो व्याधियां समाज में उपलब्ध हो रही हैं, बढ़ रही हैं या बढ़ाई जा रही हैं, उनका समापन ही धम्म की तरफ हमें लेकर के जाता है
1: जी। तो समसामयिकता उसकी ये है कि जो सामाजिक कुरीतियां उस वक्त थी उनको दूर करने के लिए धम्म जो है वो शुरू हुआ, और आज भी जो सामाजिक कुरीतियां हम अपने आसपास देखते हैं उनका निवारण हम इस दर्शन में पाते हैं जी। बहुत अच्छे से आपने समझाया। यहाँ मैं आपकी पसंद का एक और गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
0: इकबाल फिल्म का एक गाना है आशाएं
1: जी, ये आपको पसंद है गाना
0: जी?
1: बहुत ही अच्छा सा गाना है, एकदम से मूड जो है वो बहुत अच्छा कर देता है, तो हमारे सभी श्रोताओं को हम ये गाना सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बौद्ध दर्शन की समसामयिकता की। प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम और सतीश कुमार हमारे विशेषज्ञ हैं और हम अपने विशेषज्ञों से ये जान रहे हैं, हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं आज, इनसे हम ये समझ रहे हैं कि किस तरह से बौद्ध दर्शन जो है वो हमारे व्यवहार का हिस्सा बना रह सकता है और कैसे हम अपने रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उनका समाधान बौद्ध दर्शन से भी निकाल सकते हैं और वो समाधान हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर अब राणा पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन की तो एक शब्द बार बार हमें सुनाई देता है, हम पढ़ते हैं मध्यम मार्ग। आज का जो युग है, एक तो इस पर बहुत ज्यादा दबाव हम महसूस करते हैं अपने आप को हर पल साबित करने का, ये टेक्नोलॉजी जो है वो हर समय हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहती है, पीयर प्रेशर एक महसूस होता है, ग्लोबल विलेज में हम जी रहे हैं, हम AI जो है अब जीवन का हिस्सा बन गया है, तो जहां कृत्रिम बौद्धिकता जो है उस पर हमारी डिपेंडेंसी हो रही है, वो हमारे जीवन को कहें कि कंट्रोल करती जा रही है, वहां पर मध्यम मार्ग जो है उसे हम कैसे अपना सकते हैं और इसका क्या लाभ हमें होगा?
1: देखिए, मध्यम मार्ग जो है वो एक तरह से बौद्ध दर्शन का मेरुदंड है।
0: जी,
1: भगवान बुद्ध ने अपनी ही वाणी में कहा था कि मझिमा पट्टी पटी पदाति चक्षु करनी यान करनी, ये जो मध्यम मार्ग है यह आंख देने वाला है, आई ऑफ विजडम देने वाला है और ये हमें नॉलेज देने वाला है। चूंकि द्वे अंते भिक्खवे पब्बजितेन न सेवितब्बा यो चायं कामे सुकाम सुखल्लिकानु योगो हीनो गम्मो पुथुजनिको अनरियो अनर्थ संहितो, यह हमें दो अंतों को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो मध्यम मार्ग, अब जैसे देखिए आपकी चर्चा में परिचर्चा में कॉरपोरेट शब्द बार बार आ रहा
0: जी।
1: है, मध्यम मार्ग में एक सोपान है सम्मा आजीवो राइट लाइवलीहुड, इसमें बताया गया है कि किस तरह की आजीविका हमें स्वीकार करनी चाहिए, किस तरह के आजीविका पे हमें

0: जीवन जीना चाहिए
1: जी।
0: और यही सारी चीजें आगे बढ़ते हुए सुमाकर की एक किताब आई थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल जिसमें उन्होंने बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स शब्द को क्वाइन किया था
1: जी।
0: और आज ये जो है बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट एक अल्टरनेटिव सिस्टम बन चुका है पूरे विश्व में और दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा भी शुरू हो गई है। अगर इसी मध्यम मार्ग को हम उठाए मेडिकल साइंस के फील्ड में ले चलते हैं तो वहां भी जो माइंडफुलनेस टेक्निक्स हैं उसकी वहां पे बहुत प्रासंगिकता बढ़ गई है
1: जी।
0: अभी 7 टेक्निक्स डेवलप किए गए हैं जो काउंसलिंग एंड साइकोथेरापी के टेक्निक्स हैं जो पूरी तरह बौद्ध दर्शन पे आधारित है माइंडफुलनेस पे आधारित है जो मेडिकल साइंस की बात है
1: जी।
0: शिक्षा में हम अपने मेंटल कैपेसिटी को कैसे आगे बढ़ाएं कैसे मजबूत करें जिससे कि हमारा जो एक ह्यूमन कैपेसिटी है वो विकसित होकर सामने आए
1: जी।
0: रही बात जो मैकेनाइजेशन हो रहा है पूरी दुनिया का हम जो मशीनों पे आश्रित हो रहे हैं तो देखिए मशीन को चलाएगा कौन? मशीन को मनुष्य चलाएगा, मनुष्य को उसका मन उसको गाइड करता है। चूंकि आपने धम्मपद में देखा होगा मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। अब AI कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। हम AI के माध्यम से हर चीज को देखें समझें लेकिन उसके जड़ में नैतिकता शब्द का होना बहुत जरूरी है। हम किसी भी टूल का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हमें नैतिक होना बहुत आवश्यक है
1: जी।
0: और नैतिक सील समाधि और प्रज्ञा हमें सील का पालन करते हुए समाधि पे चलते हुए प्रज्ञा हमारे अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर हम वायरस पे बायोटेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और हमें हमारे अंदर सील की भावना है हम सील का विकास कर रहे हैं सील का अभ्यास कर रहे हैं हम कभी ऐसा वायरस नहीं बनाएंगे जिससे कि कोरोना जैसी महामारी आ जाएगी
1: जी।
0: हमें उन चीजों का आविष्कार करना है जो मानव के लिए मानवता के लिए समाज के लिए देश और राष्ट्र के लिए जो उपयोगी हो
1: जी।
0: हम मस्तिष्क और मशीन का इस्तेमाल दवाओं के लिए करेंगे मनुष्य के मनुष्यता के विकास के लिए करेंगे न कि ध्वंस के लिए करेंगे
1: जी।
0: तो यहाँ पे बुद्ध की वाणी बुद्ध का दर्शन समीचीन है कि मनुष्य का मशीन का इस्तेमाल मनुष्य नैतिकता के साथ करे और अपने आप को नियंत्रित रखे और इस सिद्धांत को रखे सदैव सामने रखे सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा स्वचित्त परियोधपनं एतान बुद्धान शासनं। इसको ध्यान में रखे कोई पाप न होने पाए चित्त परिशुद्ध हो जाए कुशल वृत्तियों का विकास हो और हम जीवन में आगे बढ़ते रहें पूरे मानवता की शांति होगी विश्व शांति होगी
1: जी। यानी बौद्ध दर्शन में जो है वो इस तरह की बातें हैं कि व्यवहारिक तौर पर हम अपना सकते हैं और ये हमें कहीं आगे बढ़ने से नहीं रोकती। हम आधुनिकता शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं तो हम लगातार आधुनिक हो सकते हैं अपने आसपास की चीजों से समसामयिक समाज से जुड़े रह सकते हैं लेकिन साथ साथ ये दर्शन हमें हमारे अंदर एक तरह का नैतिक मूल्य जो है वो हमेशा रखेगा जो हम काम करेंगे वो सही दिशा में जाएगा।
0: बिल्कुल
1: जी। मैं यहाँ आपसे वर्तमान समय की जो चुनौतियां हैं उनकी बात करना चाहूंगी। पर्यावरण हमारे सामने एक चुनौती है। हम लगातार बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। हम बात करते हैं कि परिवार जो हैं वो अब धीरे धीरे एकल परिवार होते जा रहे हैं परिवार टूट रहे हैं और रोजगार एक समस्या है युवाओं के सामने और अगर है भी रोजगार उनके पास तब कहीं ना कहीं वो आत्मसंतुष्टि जो है वो भाव कम होता जा रहा है प्रतिस्पर्धा है एक भाव मन में हमेशा रहता है असंतुष्टि और ऐसा माना गया है कि आप असंतुष्ट होंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो आपको प्रयास के लिए प्रेरित करेगी असंतुष्टि आपकी। बौद्ध दर्शन इन सब के बीच कैसे हमें संतुलित रहना सिखाता है?
0: यहाँ भी आपने कई बिंदुओं पे एक साथ प्रकाश डाला है
1: जी।
0: सबसे पहले आपने पर्यावरण के ऊपर प्रश्न किया है, दूसरा प्रश्न है आपका परिवार टूट रहा है
1: जी।
0: तीसरा प्रश्न है बेरोजगारी और संतुष्टि। पर्यावरण को लेके बौद्ध दर्शन में एक नई विधा की शुरुआत हो गई है 90 के दशक के बाद या 90 के दशक के आसपास, उसको कहते हैं बुद्धिस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। हमें पर्यावरण को कैसे बचाना है? जब हम तृष्णा का त्याग कर देंगे
1: जी,
0: अगर थोड़े से प्रकृति के दोहन से हमारा काम चल जाता है लेकिन हम तृष्णा के कारण जो है प्रकृति का दोहन असीमित रूप से करते हैं
1: जी।
0: यहाँ पे बौद्ध दर्शन में वृक्ष को कैसे

0: बचाना है, जल की शुद्धता को कैसे मेंटेन करना है, वायु की शुद्धता को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीजें मिलती हैं और ये सब मिलकर के एक नए विषय का जन्म देता है, उसको कहते हैं बुद्धिस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इसमें जो बौद्ध साहित्य है उसमें स्थान स्थान पर इस बात पे प्रकाश डाला गया है कि कौन व्यक्ति नीच है, जो बीज को नष्ट करता है, जो पौधे को नष्ट करता है, जो वृक्ष को नष्ट करता है, उसी को हम नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति कहते हैं। तो इस तरीके से पर्यावरण के लिए बुद्धिज्म में, और इसका परिणाम है कि आज थाईलैंड में भिक्षु जो है वो जब पेड़ कटने जाते थे तो भिक्षु उनको पकड़ लेते थे, या पेड़ को चीवर पहना के उसको भिक्षु का स्वरूप दे देते थे जिससे पेड़ कटना बंद हो जाता था। उसी तरह की चीज हमारे यहाँ सुंदरलाल बहुगुणा करते थे, चिपको आंदोलन, वो जाके पेड़ से चिपक जाते थे
1: जी।
0: ये हमारे रक्त में बसा हुआ है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, और बौद्ध दर्शन और बौद्ध सिद्धांत तो इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे भारत हो। दूसरा प्रश्न आपने किया था कि परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि हम स्वार्थी होते जा रहे हैं
1: जी,
0: स्व के लिए जीना पसंद करते हैं, हम अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने समाज को नहीं देख पाते हैं। अगर हम सबको एक साथ देखना शुरू करें, समेकित रूप से देखना शुरू करें, तो परिवार टूटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सबकी भूमिका इस समाज में, इस परिवार में निर्धारित है। हम अपनी भूमिका के तहत चलें, हमारा परिवार कभी नहीं टूटेगा। हम एक दूसरे के लिए जिए, एक दूसरे को समझ के जिए, एक दूसरे को समझने के लिए जिए, हमारा परिवार कभी नहीं टूटेगा, समाज कभी नहीं टूटेगा। और तीसरी बात आपने कहा, बेरोजगारी और असंतुष्टि, संतुष्टि परमंग धनंग की बात बुद्धिज्म में कही गई है। सबसे पहले बुद्धिज्म में एक चीज बौद्ध दर्शन में बताया गया है कि सभी चीजें नष्ट हो जाने वाली है, क्षण क्षण परिवर्तित होने वाली चीजें हैं। तो जो चीजें नष्ट होने वाली है उससे मोह क्या नहीं। रही बात बेरोजगारी की, तो हम जब अपनी आवश्यकताओं को न्यून कर लेंगे तो हमें बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं होगी, हम अपना एक आदर्श जीवन जी पाएंगे, और यहाँ पे हमें तृष्णा से मुक्ति मिलेगी, हम तृष्णा से दूर हो जाएंगे, हमारा समाज भी एक उज्जवल, एक उत्कृष्ट समाज में परिवर्तित हो जाएगा, परिवार परिवर्तित हो जाएगा और व्यक्ति परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार जो है बौद्ध दर्शन पर्यावरण से लेकर के सामाजिक प्रदूषण से लेके और व्यक्तिगत प्रदूषण, हर स्तर पे हमें पूरी तरह से नियंत्रित करने की, नियंत्रित रखने की बात करता है
1: जी। और जो ये कहा जाता है कि हम असंतुष्ट रहेंगे वो प्रेरणा बनेगी आगे बढ़ने के लिए, इस बात को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, असंतुष्ट रहेंगे कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, और इस कारण से हम अब खुद को दबाव में रखेंगे
1: जी,
0: हर समय दबाव में

0: लोगों को दबाव में रखेंगे, समाज को दबाव में रखेंगे। जब आप असंतुष्ट हैं, आपसे जुड़ा हुआ समाज भी असंतुष्ट होगा, परिवार भी असंतुष्ट होगा। इसीलिए ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इस पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें संतुष्ट होकर जीवन जीना चाहिए। लेकिन अब आप कहती हैं कि असंतुष्टि जो है वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नहीं, भारत में एक एक क्षण के इस्तेमाल की बात की जाती है, और जब हम उपलब्ध एक एक क्षण का इस्तेमाल करते हैं तो हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसके लिए संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, संतुष्ट होने की जरूरत है और एक एक क्षण का सही अर्थ में सदुपयोग करने की जरूरत है।
1: संतुष्ट होकर हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, और जैसा कि सतीश जी ने कहा कि टाइम मैनेजमेंट करते वक्त हमें पूरी तरह वहां पर उपस्थित रहना है, सतर्क होकर और ध्यान से काम करना है।
0: बिल्कुल
1: जी। चलते चलते सतीश जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बौद्ध दर्शन को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन से जुड़ी हुई ऐसी कोई भी परिस्थिति है ही नहीं जिसकी बौद्ध दर्शन बात ना करता हो। हम चाहे पर्यावरण की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, या हम व्यक्तिगत स्वभाव की बात करें, और या फिर हम आध्यात्मिक उत्थान की बात करें, अपदीपो भव वाला भाव भी हमें सिखाता है बौद्ध दर्शन। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हम बुद्धिज्म को, बौद्धिक जो स्टडीज हैं, इन सब को धर्म से अलग देख लेते हैं,

0: लेते हैं उसके बाद अगर हमारे युवा साथी कुछ पढ़ना चाहें इस तरह के कोई मोटिवेशनल जो क्लासेस होती हैं सेशंस होते हैं वो करना चाहें तो कैसी अप्रोच उन्हें करनी चाहिए कहां से वो ये सब पढ़ें जाने
1: सबसे पहले तो मैं यहां ये सजेशन देना चाहूंगा कि विपश्यना साधना के सेंटर्स पूरे भारत में हैं
0: जी
1: जो आपको रीचेबल हो वहां 10 दिन का कोर्स होता है एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट इवन वहां स्टे भी फ्री होता है और खाना पीना भी फ्री होता है उसके लिए देयर इज नो चार्ज तो विपश्यना साधना में जाएं वहां जाकर हमें धम्म के मूल सिद्धांत समझ में आते हैं क्योंकि जो धम्म है धम्म अनुभव करने की चीज है अभ्यास करने की चीज है तो एक तो यहां से कर सकते हैं दूसरा हम पुस्तकें पढ़ सकते हैं और उसका इस्तेमाल हम रोजमर्रा की जिंदगी में सकारात्मक रूप से कैसे कर सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा प्रतिपादित कई बुक्स हैं उनमें एक है भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें उस पुस्तक में धम्म को लेकर के बहुत अच्छी जानकारियां उपलब्ध है
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद और हम ये कामना करते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं और हमारे जेंजी जो श्रोता हैं वो बहुत सारी जानकारी रखते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम समय में वो अपने आप को बहुत ज्यादा परिपक्व करने की प्रयास में लगे होते हैं तो हम ये मानते हैं कि जैसे वो समय का सदुपयोग करते हैं उसी सदुपयोग के माध्यम में वो ये पुस्तकें भी पढ़ेंगे किसी न किसी माध्यम से उन्हें प्राप्त हो ही जाएंगी और हमें बताया राणा पुरुषोत्तम जी ने कि किस तरह से हम अपने व्यवहार में बौद्ध दर्शन जो है उसे शामिल कर सकते हैं और जीवन की उस तरह की कोई समस्या है नहीं जिसका समाधान हमें बौद्ध दर्शन से न प्राप्त हो बस हमें स्वयं पर काम करने की आवश्यकता है और हमें सतीश कुमार जी ने बताया कि ये 2 दिन में या किसी एक सेशन से नहीं होगा निरंतरता इसमें जरूरी है लगातार जब हम प्रयास करते रहेंगे तो हम अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति बना पाएंगे और बेहतर व्यक्ति से बेहतर समाज बनेगा और बेहतर समाज से हमारा राष्ट्र और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये मूल्य जो है वो जाते हैं बहुत ही सरल तरीके से आप दोनों ने हमें बौद्ध दर्शन जो है उसे समझाया है और हम ये चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे श्रोता जो हैं इसके बारे में जो भी जाना है उसे अपनाएं और उनका लाभ हो आज आप हमारे स्टूडियो में आए आपने हमें समय दिया इसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम बौद्ध अध्ययन विभाग नव नालंदा महाविहार संस्कृति मंत्रालय नालंदा से आप जुड़े हैं और लगातार जो है वो बौद्ध दर्शन आपके माध्यम से प्रसार भी पाता है और आज हमारे स्टूडियो में भी आप आए आपने हमें समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कुमार जी आपका कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका है और आपके माध्यम से हमारे युवा साथी जो हैं वो बौद्ध दर्शन को समझ पाते हैं और प्रयास कर पाते हैं उसे अपने व्यवहार में उतारने का आपने हमें समय दिया हमारे स्टूडियो में आए बहुत बहुत धन्यवाद
1: बहुत बहुत साधुवाद
0: तो श्रोताओं आज हमने पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में बौद्ध दर्शन की समसामयिकता समझी कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब आप सभी से लेती हूं अनुमति नमस्कार
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस के 167 रन के लक्ष्य का बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन सकते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अंजू आपके साथ।

0: दिन भर की थकान के बाद जब रात आती है तो बस तेरे ही ख्यालों की बारात लाती है। जागते हुए तो दुनिया को संभाल लेते हैं, पर सोते हुए तेरे ही सपने बुने जाते हैं।
1: मैंने

जिसको चाहते हो दिल से उसका सपना आता है, ऐसा किसी ने मुझे कहा कि जिसको चाहते हो दिल से उसका सपना आता है, ऐसा किसी ने मुझे कहा।

इश्क के फूल खिलते हैं तेरी इन आँखों में, इश्क के फूल खिलते हैं तेरी इन आँखों में, जहां देखे तो वहां ये खुशबू बिखेर देती है।

लोग तो कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, लोग तो अब भी कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, पर तेरी आंखों ने तो कुछ और ही कहा है मुझसे।

मैं थक चुका हूँ जिंदगी से, तू मुझे अपने साथ ले चल। मैं थक चुका हूँ जिंदगी से, तू मुझे अपने साथ ले चल। कि एक मुद्दत से हूँ तन्हा, कुछ तो मुझसे बात कर।

अजीब कश्मकश है मोहब्बत की राहों में, सामने तुम हो तो लफ्ज नहीं मिलते, और जब तुम चले जाते हो कमी खलती है तुम्हारी, तुम्हारे जाने के बाद फिर तुम्हारी हर एक बात याद करके हम मुस्कुराते हैं।

फिर तो अभी होंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार 1:10 पर गीत सुहाने लेकर एक बार फिर से रहेंगे आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण की केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के सर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने तिरुचि पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस के 167 रन के लक्ष्य को बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों समय हुआ है 1:11 और 12 सेकंड। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम है गीत सुहाने। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: मत कभी कभी।
1: अजीब सी बेबसी है तुम्हें न देखने में, दिन कटता नहीं और रातें सोती नहीं, तुम पास हो तो हर चीज मुकम्मल लगती है, वरना जमाने की कोई खुशी अपनी होती नहीं।

तुम्हें क्या पता कि सदाबहार हो तुम और मेरी किस्मत हो मेरा इंतजार हो तुम. कोई बहार ना थी इस बहार से पहले, इसलिए मेरी जिंदगी की बहार हो तुम.

अब कौन घटाओं को घूमने से रोक पाएगा, अब कौन घटाओं को घूमने से रोक पाएगा। जुल्फ जो खुल गई तेरी, लगता है अब सावन आएगा।

खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं और सामने

जब मैं चलूं तो साया भी अपना साथ ना दे, जब मैं चलूं तो साया भी अपना साथ ना दे, और जब तुम चलो तो ये जमीन चले आसमां चले।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसे ही समर्थन मिल रहा है। इसे

पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 7 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का और मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

बाहर की दुनिया से थोड़ा बाहर आइए, कुछ पल ईश्वर के समीप आकर बिताइए, मन को शांत रखकर एक चाय का कप लेकर धीरे धीरे प्रकृति को निहारिए। यकीन मानिए, जिंदगी खूबसूरत लगने लगेगी।

तो दोस्तों इस खूबसूरत सोच और मुस्कुराहट के साथ आप मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। उम्मीद है अरुणिमा की ये सुबह आपके मन को सुकून और नई ऊर्जा दे पाई होगी। हमेशा खुश रहिए और हर सुबह को नए सपनों

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना यातायात संपर्क मजबूत करना रोजगार सृजित करना परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण ही भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की श्रेणी शीर्ष में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं ऐसे तमाम

0: प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। आशा है कि नया मंत्रिमंडल भाजपा के चुनावी वायदों पर चर्चा करेगा। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। नवनिर्वाचित विधायकों के भी बैठकों में शामिल होने की संभावना है। मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 18वें सत्र के नवनिर्वाचित सदस्य बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को शपथ ग्रहण करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता तापस रॉय कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने तिरुची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। स्पेन के मैड्रिड स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि हता वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज पर सवार 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनसे वायरस के कोई लक्षण नहीं हैं। स्पेन के राष्ट्रीय आपातकालीन निगरानी और समन्वय केंद्र ने कहा है कि चालक दल के सदस्य के रूप में काम कर रहे दोनों भारतीयों को नीदरलैंड ले जाया जाएगा, जहां उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi will participate today in Somnath Amrit Parv 2026, marking 75 years of the reconstruction of the first Jyotirlinga, Somnath Mahadev Temple. Mr. Modi will offer prayers to Lord Somnath, perform the Kumbh Abhishek ritual and later address a public gathering. A roadshow has also been organized. On this occasion, Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi will also remain present. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari will chair a meeting of the Council of Ministers at the State Secretariat, Nabanna today. Portfolios are expected to be distributed among the 5 ministers who took the oath of office and secrecy along with the chief minister on Saturday at the Brigade Parade Ground. The new cabinet is expected to discuss the BJP's electoral promises. Issues such as Ayushman Bharat, Annapurna Bhandar and implementation of the 7th pay commission for state government employees are likely to come up for discussion. A guard of honour will be presented to Chief Minister Suvendu Adhikari at around 11 a.m. today, following which the cabinet meeting will take place. Newly elected members of the 18th West Bengal Legislative Assembly will take oath on Wednesday, Thursday and Friday this week. Senior BJP leader Tapas Roy will serve as the pro tem speaker. US President Donald Trump has

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मैं आपके साथ अर्चना गोयल। नमस्कार दोस्तों, सुबह की इस सुनहरी बेला में आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम भोर सुहानी में। अगले 40 मिनट तक हम साथ चलेंगे प्रकृति की उन राहों में जहां ओस की बूंदों में उम्मीद चमकती है, जहां हवाओं में ताजगी बसती है और जहां हर नई सुबह हमें ये एहसास दिलाती है कि जिंदगी हर दिन एक नया मौका देती है। पॉजिटिव विचारों के साथ आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, जब सूरज अपनी पहली किरण धरती पर बिखेरता है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हमें मुस्कुरा कर कह रही हो, कल चाहे जैसा भी था, आज फिर से शुरू करने का दिन है। तो आइए इस खूबसूरत सुबह का स्वागत करते हैं सकारात्मक विचारों और मधुर गीतों के साथ।

दोस्तों, कभी गौर किया है कि पेड़ कभी शिकायत नहीं करते कि उन्होंने धूप क्यों मिली। नदी कभी नहीं रुकती कि रास्ते में पत्थर क्यों आए, और फूल कभी ये नहीं सोचते कि उनकी खुशबू कौन महसूस करेगा। प्रकृति हमें हर पल